0: को खुश कर जाए, मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़, जब जी चाहे शौक से खाए,
1: रम को लम
0: सेक के खाए, तल के खाए, मजेदार लज्जतदार सा स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़।